0: 哥们，把你盯着咱老五打了我要说的啥的该不哥们。剩下的朋友叫你也不在我这都来帮谁朋友。别说三个人我还拿大哥都咱妈别打一个哟。我是大人的是大人说不打妈把你摆在一个人来呀不。问到一边是个人说没路给你妈我不给孩子不。你那大比克姑妈的我也看着把妈擦了一天。也是那儿子的我谁把他的妈也要干的我也。说的这特别干扰不给那把你的脸上来呀你。说的这特别干扰不给那把你的脸上来呀你。不在那儿的哥哥的那地那里换大我也要把你。一说我这里给我来呀把大傻朋友不打过。可是你哭是我一定能拉把拉的你咋不来换咋哟。不如把的那个你没打一来滚的把大人个让。也是一个人的比个人妈妈也是在地方还不如。心里边是个把三个孙子的大王大伟拿着的陪你玩。一边是就有的米来马来说的里有你把地图落了个一。군대바다잔가라움하네라서대우띠미래바람만바래라예사님이따반추바일에바에고시리비스누레조차아기가래고
1: 아뭐메로가고우리성카르가우팔리가원남사로뭐메로남시타우프레티오राजा जंगलमा शिकार गर्दै एक्लै गएका थिए तिर्खाले जल खोजी खोजी बनामा हेरेर घुम्दै गए घाँस काट्नु भनेर गए कि भिरा माटीको खस्यो पातैमा जसको थियो लहना उसैको गहना सिन्दुर पर्यो माथैमा काकोइली बनमा ढुकुर जुरेली रानी चरी धोबिनी

हे राम ईश्वर को नाम फल होने काम सब ये जन भक्त जन ने हो भजू भनी देखने आखिरी का पलना छेउमा चिमन देखि नारायण।

हूँ। संचे बोले गरियो बताए मोइले देराई कुरा के कहूँ। शिलोक भन भने रायल तारा।

न देशाय लजाऊ फिरता मत निन्न कसाय बनमा कोई दिन शिकार खेला दाना जलपान करनी नीति गई आश्रम देखी मलाई मोह भई चित खाई

0: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: सैलून सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलून समाचार को सहयात्री।

बर्मन का लड़का बनेर हनुमान जाऊते को हुन भनी जानते क्या मन में छ सप वरीपरी हेरेर ढोड़छन् अनि आज्ञा पाएर हनुमान जीले दर्शन प्रभु को गरे बोको शेर रघुनाथलाई पनि खुब आफ्नो स्वरूप झट धरे राम्रो छु मान कन पोकी जल्दी हनुमान सूरीबाको पासामा पहुँचाऊ रघुनाथलाई पनि खुब कुदे ती आकाशमा जल्दी पर्वतको उपर पुगी गए छाया बिसे राम रहे सूर्यलाई खबर दिन भनी ता जल्दी हनुमान गए आज्ञा पाएर सूर्य बजीले दर्शन प्रभुको गरे आँगा कोमल भाँची आश्रन दिए आनन्द भाँती परे आश्रन सूरी बलाई लक्ष्मण दिले दिए हनुमानले

मेरो नाम सूर्यबार थापा, भिनपा तीन तारथलीबाट म हनुमान चालिसा रेकर्ड गर्न चाहन्छु। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमनम गुरु सुधारी वर्ण रघुवर विमल दशु जोदायको फलचारी बुद्धिहीन दोन जानकी सुनिर पवन कुमार बलबुद्धि विद्या देहु मई हर कलश विकार ओम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपिष्ठ लोक उजागर रामदूत अजुल्त बलधाम अञ्जनी पुत्र पवन सुतराम महावीर विक्रम बजरंगी

निधि के दाता अस्वर दिन जान की माता राम रसायन तुम्हारी पासा सदा रघुपति के दासा तुम्हारी भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख विश्रावे अंत काल रघुबर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त खाई और देवता चिदन धरई हनुमत से सर्वसु करई संकट कटे मिर सब पीरा जो सुमिरई हनुमत बलबीरा जय जय जय हनुमान गोसाई कृपा कर हूँ गुरुदेव की नाई जो सतबार पाठ कर कोई छुटी बंदी माँ सुख होई जो ये पढ़े हनुमान चालीसा हो ये सिद्धि साखी गौरीसा तुलसीदास सनाहरी चेरा किजनाथ हृदय महडेरा ओम पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसवं स्वरूप शिवर रामचंद्र शंकर जी बजा जय हनुमान जय बजरंग बली।